कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे कर सब हूं जेते

का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम।

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा शिखरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: Kenya's premier Asian mix.
1: आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.